0: साई कार कमावनी तुर छोटी तिने पाए नानके की बाहरी और दूजी नहीं जाए।
1: सो करे जे तिसर जाए, सो करे जे तिसर जाए।

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: बोला जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी के पातशाह दसवी प्रथम भगौती सिमरका गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याईया जैस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। पंजा प्यारियां सह साहिबजादियां चालियां मुकतियां हठियां जापियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छगिया। देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सवासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी।

गुरु चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब, तहां तहां रचिया रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले, बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जे। सिखा नू सिखी दान, केस दान रहत दान, बबेक दान विसाहा दान भरोसा दान। दाना सिर दान नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल, धर्म का जयकार। बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जे। सिखां दा मन नीमा मत उच्चे, मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे, जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नूं बख्शो हे नमानियां दे मान। नतानियां दे तान न्योटियां दी ओटा, धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान, सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर सबद चौंकी, आसा दी वार दे भोग जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी, सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवन।

तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन घर बनायो खुरासान खसमाना किया हिंदोस्तान डराया अपै दोष ना देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तै की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारे ता मन रोस न होई सकता शी हो मारे पै वगै खसम सा पुरसाई रतन विगाड़ विगोए कुत्ती मोया सार न काई आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड़ियाई जे को नाउ तराए वड्डा साध करे मन पाणे खसम नदरी कीड़ा आवे जेते चुगै दाने मार मार जीवै तां किश पाए नानक नाम वखाणे लिख कत है ना छूटियै खिन खिन भूलनहार बखसनहार बखसलै नानक पार उतार सुकह टल गुर सेवियै अहनिस सहज सोभाए दर्शन परस गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अर सोह कुर सोह चटिया तुद डठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बिलावल महला पंजवा ज्यों।

पौड़ी वटी हूँ वडा अपार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेकना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरे बस तेरा कर पला, तेरे कारण आनंद बधाई तुद कार्य मान महता तेजा।

दिवस रात बधाई दाया खेलै सगले जगत, चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म दूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम

0: करतबा, रंग परंग नेकना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किश जान ला, सब किश तेरे वास तेरा कर पला, तेरे कर आनंद वधाई तुद कर, मान महता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिस जत कता, नानक दास दास तुदे आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिसरा दुदाई दाया खेलै सगल जगत।

महत दिवस रात दुए दाई दया खिले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वच धर्म हदूर

कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारे, हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी, रख संगत।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहेओ सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार सगल

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्द ता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यो मनहो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान की टिट हो जिस दिया एह वडे आईया कहे नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनद।

जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूर सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा।

0: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह।
1: बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गोर नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदा वैताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी, सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु।

जग और न याहे महातम मह अवतार उजागरयान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो एह पद्धत ते मत चूकह रे मान भेद विभेद न जान बियो प्रत्यक्ष हृदय गुरे अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो चरण सरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है पावनी भगत पाए कौडी अगर भाग राखै ताहे गुर सर्व निदान दान देत है सतगुर दया निद महिमा अगाध बोध नमो

सूरा सो पहचानिया जो लड़ै दीन के हेत। पुरजा पुरजा काट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीत में अपना, तान मान होए निहाल जागुर देखा सामने। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी नूरे अरसहु कुरसहु चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सच्चा पातशाह सिर साहा दा जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसा सजन सच्चा पातशाह सिर साहा दा जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसा सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सलोका राज कपटं रूप कपटं, तान कपटं कोल गर्भत है। संचंत बिखिया छलं छिद्रं, नानक बेन हार संग न चालते। राज कपटं रूप कपटं, तान कपटं कोल गर्भत है। संचंत बिखिया छलं छिद्रं, नानक बेनहार संग न चालते। पेखंदड़ों की भुला तुम्मा दिसमा सोहना, अड ना लहंदड़ो मोल नानक साथ न जुलई माया। पौड़ी चल दिया नाल ना चल, सो क्यों संजिया तिस का कहो क्या जतन। जिस ते वंजिया हर बिसरिया क्यों त्रिपतावा। नाम मन रंजिया प
प्रभु छोड़ आन लाग नरक समंजिया हो कृपाल दया

0: चंदन चांदन सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जान सुन प्रताप गोविंद निरपौ पय मन तोट न आवै मूल संचया
1: आठ पहर

0: दर्शन प्यासी दिन सिरा चित्वो वंदनीत खोल कपट गुर में लिया नानक हर संग मीत चाला गे उठ नाम जाप निस्बा सुरियारा कारा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाद सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली
1: हम अवगुण परे एक गुण ना अमृत छाड़ बिखे बिखा माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाय एक ओंकार सतगुर प्रसाद असा महला चौथा शंत कर चौथा तन तन श्री गुरु राम

0: दीपालोआ मंडला खंडावर पंडाह अंडज जेरज उत्पूजा खानी सेत जाहा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता हम नानक जंती उपाय कै संभाले सबनाह जिन करतै करुणा की है चिंता पे करनी ताह सो करता चिंता करे जिन उपाया जाग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणिया पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख नेकियां चंगियां लख पुन्ना परवान लख तपू प्रतीर्थां सहजोग।

0: कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सुवेना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार किस नाल की चाहे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखे कूड़ डबे पूर नानक बखाने बेहनती तुदबाज कूड़ों कूड़ महला पहला
1: सच ता पर जानिए जा हृदय सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोय सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाउ सुन मंदैसिए ता पाए मोख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो धरत काया साध के विदे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सत गुरु नु पुछ के बह रहे करे निवास सच सबना होए दारू पाप कड्डे तोए ना।

0: कच्चो कंचन पयो शब्द गुर सरवणे सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुरमुख पण्यो लोयो होयो लाल नदर सतगुर जद तारे पाहन मान करे ज्ञान गुर कहो बिचारे काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुर चरण जिन परसिया से पस प्रेत सुर नर पए जाम गुरु होए वल तने क्या गर्व दीजे जाम गुरु होए वल लख बाहे क्या कीजे जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चे कर जो गुरु गुरु अहनस जपे दास पट बेनत कहे जो गुरु नाम रिद में तरे सो जन्म मरण दो थे रहे।
1: गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे गुर कर सच विचार गुरु करे मन मेरे गुर कर शब्द सुपुन अगन कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कहो नल कह जिन गुरु ना देखियो ना कियो ते अक्यथ संसार में।
2: गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत संवाद शब्द जिसके रे फुण दुख नाश सुखदायक सुरो जो तरत ध्यान बसत तै नेरे पूरो परख हृदय हर सिमरत मुख देखत।

0: गुरुमुख देख गरु सुख पायो, कुती जो प्यास पीयूष पिवन की, बंचत सिद्ध को बेद मिलायो। पूरन पो मन ठार बसो, रस बासन सोजो धन दस्तायो। गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम, जल्यन तीर भी पास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरुमुख देख गरु सुख पायो। समरथ गुरु सिर हाथ तरयो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरयो, निसबासर एक समान ध्यान। सो नाम सुने सत भान डरयो, भन दास सो आस जगतर गुरु की। पारस पेट परस करयो, रामदास गुरु हर सत कियो। समरथ गुरु सिर हाथ तरयो।
1: अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हरनाक्ष फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। सीनत वस्त्र दीन बहु साज, सो दामा अपदा ते राखिया। गनका परत पूरे ते काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कलज होए। राखो दास पाठ की लाज, झोलना गुरु गुर गुरु गुर। गुरु जप प्राणी हो, शब्द हर हर जपे। नाम नव निध अपे, रसन ऐ नस रस। सत कर जानियो, फुन प्रेम रंग पाइए। गुरमुख त्याइए अन मार्ग तजो, भजो हर ज्ञानियो। बचन गुर रिद धरो, पंच भू बस करो। जन्म कुल उद्धरो, द्वार हर मानियो। जो तो सब सुख, इत उत तुम बंछवो। गुरु गुर गुरु गुर, गुरु जप प्राणियो।
2: गुरु गुर गुरु गुर, गुरु जप सत कर। अगम गुण जान निदान हर मन धरो, ध्यान ऐनिस करो बचन गुर हृदय धर। फुन गुरु जल बिमल अथाह मजन करो, संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निरभो जपै, प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रम तजो, नाम गुरमुख भजो।

सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्ब भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मछ कछ हो बरहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार तज विकार मन गय अंदर।

अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदि नूर अरसहु कुरसो चटिया तुद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाहद जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो सज्जन सचा पातशाह सिर शाहद शाहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सत

राम काली महला पहला। सोरत शबद साखी मेरी सिंगी, बाजे लोक सुने पत चोली मंगण कहताई। पीखिया नाम पड़े सोरत शबद साखी मेरी सिंगी, बाजे लोक सुने पत चोली मंगण कहताई। पीखिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे, गोरख सो जिन गोए उठाली। करते बार ना लागे बंद रखे। चांद

जगदलोण रह कृत संग पाणी कमल रह ऐसे भगत मिलह जन नानक तिन जम क्या करै।